दुर्गा आदि शक्ति है, निर्बल निर्धन मानव का बल है माँ दुर्गा। दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा के जितने नाम और रूप उल्लेखित हैं, सभी नाम और रूप सर्वथा और सर्व स्थानों पर पूजित हैं। माता दुर्गा देवताओं की शक्ति में है, भक्तों की भक्ति में है।

0: आमिर शाह हीरो संगीत इन प्रोसेस।
1: मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना।
0: अगर से आप बड़े चल रहा है ना,
1: क्या क्या कहूँ, क्या हुआ है कमाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना।
0: और अच्छा निरान विच वन
1: अपने मुर्गी को
0: फिर इस निरान है
1: संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना।
2: It's Empress Al Lovelies.
0: Didn't you care what she said, na? Gotta be back. Don't worry, before you go, why don't you get out about this song? I'll see you soon, you're...

0: energy of Sangeet 106.1 FM. This is us.
1: किसे सुनाए इस दिल में चल रही है.
2: Remember 343-1061

0: Mac Daddy.
1: Mac Daddy. Mac Daddy. मैं चाहूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे,
2: जाओगे।
1: कहता हूँ जान बहुत पछता।